0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Azama. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

0: शुभ खा गई
1: जी बिल्कुल सही सॉन्ग तो जरूर वही और बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामा सॉन्ग मिल्की मिल्की ड्रामा सॉन्ग ठीक छो नो बिल्कुल खजी मलकियत ड्रामा सॉन्ग सही था पाकिस्तानी शुकुम ड्रामीज या गए डर मुख्तलिफ शुकुम देना मुद्दी के ना सही नो बिल्कुल दास के बीच कॉल शामिल हुई प्रोग्राम से खो आगे ना मखी ज्यादा खबर कहो छे अजान ब्रेक हाँ चुकम दे यार रोन दे अजान ब्रेक तरफ तो हाँ बिल्कुल सी खो दास के बीच आगे ना मखी द मैसेज शामिल हो बेबे आगे ना बाद अजान ब्रेक तरफ था ठीक सा अजान ब्रेक ना पास शिकल हाँ रोश बेबे तो कॉल चुकम दी दावे प्रोग्राम के शामिल हुई सही था नो बिल्कुल मैसेज कर दे सलाम एंड वेलकम टू द कैरेक तारिक भाई घर में खैर खैरियत थी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अम्मी को मेरा सलाम कह दिया आपने कि नहीं हाँ बिल्कुल ता सलाम चुकम दे मोमी तक करना ठीक छोड़ डेर बना ना मना है मैसेज कर दे यू जहान बना ना सलाम हो चुकम दे गना दे मन हो सवाम मिले जी नो सलाम हो जरूरी दे ठीक छो नो डेरा मना ना मना है मैसेज कवले यू जहान बना ना थैंक यू प्रोग्राम से मैसेज होकर डेरा डेरा मना तो हाँ प्रोग्राम से वेलकम सही दो नो बस छुट्टे चिकम दो नजर तेरी चिकन जी भी है पता हाँ वो लगे सही नो बस द्रे द्रे चुकम दे मोह ख्याल होश हो लगे ना नो मजा से बगैर सी डेरा मनना ची प्रोग्राम से मैसेज को मना है यो जहान मनना शाह देना लवा बलदा ची मिश पत्र बन हो बरमी ना डेज यो शोरी भी नो बरमी ना भी डेज यो दसूर जो खुदा से बरमी ना भी नो खुदा से बाचे गर्मी चुकम देगा ना नो गर्मी लगा पता ना लगे दला सही था जगह ची बरमी ना भी नो आगे पोजबाने गर्मी भी पता ना लगे दला मौसम माशाल्लाह जबरदस्त हो डेरा मनना देना लवा नेक्स्ट मैसेज चाक कर दे रखी पचक मैसेज कर दे वैसे रखी पाचा क्या उम्मीद करता हूँ कि चुटिया अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और वापस आए होंगे बिल्कुल सही डेरा बना ना रेडियो अमन स्टेशन पर थैंक यू रखी पाठक डेरा डेरा बनना बिल्कुल बता दे परिन चुकम दर ओला ईशा नो परिन होता सोची बा प्रोग्राम से ना हो नो यो जहान बना रखी पाठक सही था जी रखी पाठक व्यायु कहना चाहिए वेलकम बैक टू द रेडियो अमन 88.4 करक नेटवर्क डेरा बनना थैंक यू मैसेज के वाले रखी पाठक यो जहान बना ईशा ब्याह वही कहना चाहिए उस अच्छा रखी पचक के गैन विच अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो बर्गर और सैंडविच का लेते हैं पाकिस्तानी एक सैंडविच और दो बर्गर का कर कहते हैं बस कर दो फिर रोटी

ओके फारूक भाई, यो जहान मनना द मैसेज कवल जी, यो जहान मनना, थैंक यू सो वेरी मच द मैसेज कवल रे, पर आई सो मैसेज शामिल हुआ जी, बिल्कुल कल तरफ से व्यस्त हूं। ओके सी नेक्स्ट।

Okay, जी, नेक्स्ट मैसेज वही चाहिए. आई मंसूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला. वही चाहिए शो इज वेरी नाइस. शो में प्रोफेसर रहमतुल्लाह दर्द की पोइट्री शामिल करो. ओके जी, दाहो खपल शेरी वा शामिल है. मैं कह रहा हूँ लाइक है ना. ठीक शो जी, बिल्कुल तो ताद रहमतुल्लाह दर्द से आगा पोइट्री सीधा शामिल है बेशी प्रोग्राम सुरावर. वाई मंसूर वजीर यो जहान मनन है जी.

ओके जी, उर्दू वाला पोएट्री वही छे, ऐसे न जाना तुम हम तो बिखर जाएंगे, ऐसे न जाना तुम हम तो बिखर जाएंगे, बिल्कुल मुखबला पोएट्री था उर्दू, और तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे। ये दिल अपना नहीं ये दिल तेरा है, तेरी पनाहों में दिल का बसेरा है, कर लो नजर तुम जो हम निखर जाएंगे। इश्क मोहब्बत में ऐसा भी होता है, कोई हंसता है कोई रोता है, कर लो मोहब्बत तो हम सफर जाएंगे। तेरी निगाहों से ऐसे जो तेरी निगाहों से ऐसे जो चलते हैं, आशिक मजनू फिर ऐसे मचलते हैं, और तेरी हातिर तो खुद से गुजर जाएंगे, और राज दिल तुम हो राज वफा हम हैं, तुम जो पास मेरे तो फिर क्या गम है, एक इशारे पर दिल में उतर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे, ऐसे न जाना तुम हम तो बिखर जाएंगे, तेरे बगैर जाना हम तो मर जाएंगे। सो बिल्कुल जी, जिजत पे दिन गोड़ा और दागा संदर और सरोवर वैसा द बिल्कुल आखिर के दब लेगा हूँ।